0: वो करना ही सही, फाइट कर लेगा।
1: कमजोरी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।

अच्छा सा मिक्स हो, मिक्स हो सके। जुर्द आपके पास है 100 ml भी अगर है तो उसके अंदर ये आसानी से मिक्स हो सकता है सप्लीमेंट। इसको मिक्स करेंगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैंने आपको बहुत दफा बताए हैं इसके, ठीक है। ऐसी माएं जिनको दूध का मसला है वो आप ले सकती हैं, दूध ट्रिगर हो जाता है, दूध माँ को फौरन आना शुरू हो जाता है, ठीक है जनाब। और बच्चा भी, क्योंकि माँ के दूध से कोई चीज नहीं मिलती है, कोई भी उसका अल्टरनेट है ही नहीं, तो कुदरती तौर पर उसी को ट्रिगर करवाइए जो कि माँ का अपना असल दूध है। बाहर के डब्बों के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा है, वही खर्चा माँ के ऊपर कीजिए। वो जो आप 3,000 का 4,000 का डब्बा लेकर अपने बेटे के लिए आते हैं, बच्चे के लिए लेकर आते हैं कि आपकी बच्चे की माँ का दूध नहीं है, वही खर्चा ताकत प्लस की सूरत में माँ को दीजिए, ठीक है जनाब। और माँ का दूध खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, आ जाएगा, और बच्चा और माँ दोनों की सेहत। उससे क्या होगा, जब आप माँ पिए की ताकत प्लस को तो उसकी अंडरस्टूड सी बात है, उसकी भी सेहत बनेगी और बच्चे की भी बनेगी। तो जनाब हमारे प्रोडक्ट टांक और डेरा में हर जगह मौजूद है, जफराबाद में हाजी जरी जनरल स्टोर, आप यहां से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा उमर जनरल स्टोर दरबार वाली गली, वहां पर हासिल कर सकते हैं। यूसुफ चौक के ऊपर जहद शॉपिंग सेंटर है, डेरा इस्माइल खान की बात कर रहा हूँ, वहां से हासिल कर सकते हैं। केसन शॉप अकबर प्लाजा में जाइएगा, चुगला के साथ है मियां कमर्शियल मार्केट, उसके पीछे अकबर प्लाजा, और वहां पर मौजूद है केसन शॉप, हमारी अपनी शॉप जहां से बाजार से आपको चीजें काफी सस्ती मिलती हैं। कूपन्स वगैरह का सीन भी है वहां पर, तो कूपन्स भी आपको मिलते हैं, कुरंदाजी में नाम आता है तो फिर इनामात भी आपके निकलते होते हैं, तो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अमान जनसो, फारूक हारसेरा, तमाम जितनी भी दुकानें हैं वहां से आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। गुलशन कैश एंड कैरी, ठीक है जनाब, यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। टांग के अंदर जो है सदाम मार्केट जो है, टांग के अंदर जो है मार्केट है रमजान मार्केट, सदाम प्लाजा जनाब, वहां पर मंसूर जनरल स्टोर है, वहां पर भी हासिल कर सकते हैं आप प्रोडक्ट। इसके अलावा अलबदर मार्केट के सामने, टांग के अंदर है अलबदर मार्केट, उसके सामने है बिल्कुल वहीद जनरल स्टोर जी, आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। सदर प्लाजा की बेसमेंट में मदीना जनरल स्टोर, वहां से हासिल कर सकते हैं। अलबदर मार्केट टांग के अंदर फहीम जनरल स्टोर है, वहां से हासिल कर सकते हैं। और गुलाम जान जनरल स्टोर ट्रैफिक पुल, वहां से भी हासिल कर सकते हैं। टांग से सनी हमारे साथ मौजूद है और टांग से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। केसन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं और आपकी टांग की फीमेल में से सबसे पहले हमें मेरे ख्याल में कि जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया था वो यही हैं, सनी जिनका नाम, और इस्तेमाल भी करती हैं और आई थिंक रीसेल भी करती हैं, तो इनसे भी आप प्रोडक्ट केसन के तलब कर सकते हैं। आपके मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं और मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। आमिर अवान पाकिस्तानी के यू, हाल सुना, हाल खलील भिरा, केसन दी हर शह लाजवाब होंदी है, केसन दी गबरू भी बड़ा है, गबरू भी बड़ा डायरेक्ट जन्नत दे अंदर वैसे मेरा लाला, लाला को चा दो भेज मेरा बनकर मेरा कोपर फटता ही भी। किकर खान को सलाम कह रहे हैं, चाय का नाम सुनते इनको परेशानी लाहक हो जाती है, फरमान है हम कहते हैं तमाम लिसनर्स को सलाम जी, वालेकुम सलाम। हिम्मत से हमारे साथ सलमान खान मौजूद हैं जनाब, और क्या कहते हैं सलाम कह रहे हैं, कंगन कलाई चूड़ी या पायल ये बात कर, ए खुशनुमा तू सारे वसाइल पे बात कर, मेरे सुखन का रिस्क रिस्क है तेरे वजूद से, बैठ मुझसे अपने फजाइल पर बात कर। स्वीट वाली दुरे अदन आ चुकी हैं जनाब लंबे जोड़े मैसेज के साथ, और देखिए कि क्या कहने वाली हैं ये।

तेरे है ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशिया। हमारे साथ रहे।

0: तो और बहुत सारी अकसाम है। एक आधे सर का दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। सर दर्द की वजह से आंखों में दर्द होना, आपके पूरे जिस्म में दर्द होना, आप का यानी कि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, आपको उस चीज की तरफ दिमाग ना जाना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो सर है आपको ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन जो है वो सर में चल रही हो, ऐसा लगता है, इस किस्म का शदीद दर्द होता है। तो आज इस दर्द के बारे में हम हकीम साहब से पूछेंगे कि जो सर का दर्द है इसकी असल में वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, हम ऐसी अपनी जिंदगी में कौन सी जो है गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यह मसला दरपेश है। तो बिल्कुल सर, आप जिन्हें इस तरह की भेड़िया बिना मैं को सुन दे पैन तो आपको मैं प्रोग्राम भी वेलकम आदा ते ए प्रोग्राम तोरी खिदमत इच अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल पेश कीता पिया वेंदा जेड़ी के शवाल मार्केट दे अंदर मौजूद है। बिल्कुल जनाब, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। इंशाल्लाह हकीम साहब कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होंगे और मरीजों का जो चेकअप मायना है वो जारी रहेगा। आज भी हकीम साहब अपने क्लिनिक पर मौजूद थे और आज की तरह कल भी मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मायना जारी रहेगा। बिल्कुल जनाब, दीन अलावा चुमरा हम पुख्तनाजा प्रोग्राम वार भी सासु चोलता हम प्रोग्राम के हर खिले वायाग्रहण कोदा प्रोग्राम सासु खिदमत के अलशिफा दवाखानी दखसूसी ताउन सर पेश को। बिल्कुल सर, आप ग्रान अरविदुन को योदा से तरीका इलाज इच किस्म हम साइड इफेक्ट की नश्ता अगीत वेले की देसी तरीका इलाज हर्बल तरीका इलाज कम से जुड़ी बूटियों ने जोड़ से वह और दा इलाज बस्ता सुध मिलावी की अलशिफा दवाखाने बांधे अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के और नन प्रोग्राम की बमूंगा खबर को दा सर दर्द बारे छे वली चे दा सर दर्द शिकायत नन सबा अवड़को तो हमस्ता सर तो हमस्ता خویاندو تبرون تا ټول تا مسله ده چه کلا شپیس آس سملی یا کلا ساس شکم باڑی دا آری لیس کی جی ساس چه سر کے ڈیز جا درد ہو سی او دی باری که بنن حکیم صاحب سر خبر یا طریقو او حکیم صاحب تاسو دا بدی والی علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی بلکل سر آپ کا ساس چیر صحت والی سر سوال بھی ساس حکیم سے انہوں تو پس کو بلگوانم بلکل ساس مالک خال کے بلے سو پسیفر 55-23-404 बांधे और दिन अलावा 09-63-511-488 बांधे हम सासु काल कवल है। सो बिल्कुल लिसनर्स, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ और सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं विच इज ब्रॉट यू बाय अलशिफा दवाखाना। अलशिफा दवाखाना की खसूसी ताउन से ये सेहत का पैगाम आपकी खिदमत में डेली 7 से लेकर 8 तक पेश किया जाता है। तो चलते हैं जी, सेहत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और पिछले 30 सालों से देसी तिब से वाबस्ता हैं, सो हमारे साथ आज भी ऑन ईयर और स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी हकीम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है हकीम साहब, आपकी दुआएं हैं, हमारे सुनने वालों की दुआएं हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही
0: है। आज का दिन हकीम साहब कैसा रहा? आज ठंडा दिन रहा होगा, मौसम बेहतर?
1: हाँ, काफी मौसम चेंज हो गया है, रातें अब ठंडी होना शुरू हो गई हैं। ऐसी बात है। हाँ। और इस मौसम का असर जो है फिर वो हमारी बॉडी पे भी बिल्कुल असरअंदाज होता है।
0: जैसे मौसम ठंडा होने लगता है हकीम साहब तो दर्द बढ़ने लग जाते हैं, हमारे जो मशरान हैं बड़े हैं,
1: दर्द के अलावा गले खराब हैं,
0: खांसी है, बुखार है,
1: नजला बुखार, ये चीजें आती हैं। ठीक है, बहरहाल थोड़ा सा अपनी केयर करनी पड़ती है और मौसम तो खैर बदल जाएगा,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: थोड़े दिन बाद मुकम्मल तौर पर जब मौसम सर्द होगा तो काफी हद तक जो मर्ज हैं वो भी कंट्रोल में।
0: ऐसी बात है किम साहब, ये बताइएगा कि एक बढ़ता हुआ मसला यानी कि सर का दर्द, पहले तो हम देखते थे जो हमारे बड़े थे यानी कि 40 साल से वह उनको सर के दर्द का मसला होता था, आजकल तो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, सो इसकी क्या वजूहात हैं और सर दर्द की कितनी अकसाम है इसके बारे में बताइएगा जरा।
1: वजूहात जो है वो तो सबको ही पता है कि हमारे शेड्यूल खराब हुए हुए हैं, हमारी रूटीन्स जो है वो नहीं है सही, हमारे खाने का, हमारे एक्टिविटीज का, हमारा तकरीबन ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं अपनी लाइफ में। ये चीज जो है फिर थोड़ा सा असरअंदाज होती है, टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ हालात ऐसे हैं, हर चीज पे देखना पड़ता है, तो वो फिर जाहिर है कि हम लोग ज्यादातर फिर अपने पे लेते हैं, जब अपने जहन पे उस दबाव को लेते हैं तो फिर उसके असरात तो आने हैं।
0: ऐसी बात है।
1: और इसमें बस यही है कि जहां तक है आप कोशिश करें कि करना तो कुदरत नहीं है।